0: रॉक स्टार देवी श्री प्रसाद लाइव इन कॉन्सर्ट।
1: नैनो पक्का लोकल नैनो पक्का।
0: रॉक स्टार PSP लाइव जून 26th 8 PM एट सैन होजे सिविक। ग्रुप डिस्काउंट्स आर नाउ लाइव। गेट 15% ऑफ व्हेन यू बुक 4+ टिकट्स इन VVIP, VIP और प्लैटिनम कैटेगरीज। गेट 10% ऑफ व्हेन यू बुक 4+ टिकट्स इन गोल्ड। गेट 10% ऑफ व्हेन यू बुक 10+ टिकट्स इन सिल्वर और ब्रॉन्ज। फॉर टिकट्स विजिट bata.org। प्लैटिनम स्पॉन्सर सीनियर लोन ऑफिसर सौजन्या अनुबोतु। गोल्ड स्पॉन्सर अमोघम इंडियन क्विजीन।
2: On your mark, get set, transfer.
3: Transfer?
2: Yes, transfer money to India in a blink at the best transfer rates with MyPursu app. Sending money, paying bills, helping parents, shopping, shipping your parcel or securing your family's future. Now everything is easy with MyPursu app. Send money to India at best exchange rates.
4: MyPursu, one app, one tap. Download the app today or visit MyPursu.com.
5: We beat Google rates. Check for latest.
6: Rockstar DSP is coming to the Bay Area on June 26th. Want free tickets? Here's an offer from Apex Consulting Services. Submit your updated developer resume to Apex for an opportunity to receive free DSP concert tickets. Your next career opportunity and your next concert experience could start today. Register now by sharing your resume at info@apexconsultingservices.us or call 510-431-7670.
7: Recipients will be selected at random. No purchase necessary. Limited tickets available. Not all entries will receive tickets.